अल्लाह चौथा हर के जानो सतगुरु सतपुरखा बिनौ करो गुर पास हम कीरे कर्म सतगुरु सरनाई कर दया नाम प्रगासे मेरे मित गुरदेवो मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई हर कीर्त हमरी रह रास रहाओ अर्जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलाए तृप्तस है मिल संगत गुण प्रगासे

कहूँ सिमट भय शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंभव, आदि जुगाद स्वरूप सजंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संघरो। दोट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तो जो तब सरणी पड़े, तिनके दोट दुख तुह मरे। पुरख जवन पग परे तिहाने, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक

दास जान दहत बारू हमरे सबरियन संघारो प्रथम तरो भगवत को त्याना बहुर करूं कबता बेद नाना कृष्ण जथा मत त्रित्र चारो चूक होए कब लेहु सुधारो कबियो बाचो दोहरा जो निज प्रभु सो कहो जग माहे जो तेह प्रभु को त्याए है अंत सुर को जाहि दोहरा हर हर जन दोई एक है बे विचार कछ नाहे जल ते उपज तरंग जाऊं जल ही बिकै समाज दोहरा जब इस प्रभु को पयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेपते तब हूँ कहत सुनाई का बाच दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर वचन कहा सिर ने

आत्म सकर न कोई सम्मत 1755 हाड़वदी प्रथम सुख दामन प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहो लिहो सुधारा दोहरा।

रहमत करन सतगुरु जी, पढ़ी हुई बाणी कीती हुई मालक की सिव सलाई हुई सत्संग के हिरदे वसाणा करन, गुरसिखी जीवन बख्श कर दरों करो नाम की दात सिखी सुख भरोसा बख्श कर जी। आओ हूँ ज्ञानी जी ज्ञानी दर्शन सिंह जी उन्होंने पासों सतगुरों के पावन इतिहास की विचार सरवण करिए। दास रन फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा।

हर कृष्ण गौरव तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गौरव नमो चरण अरविंद जिस मह अमृत ज्ञान है

वाय गुरु गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु

गए मसकत काल नानक से मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक से मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की

0: मांगे मुख कर संतन की तोरे अंतर जामी पुरख दाते शरदा
1: मन की पूरे नानक दास होय है सुख मांगे मुख कर संतन की

अहनिष सहज सुभाए। दर्शन परसे आए गुरु का, जन्म मरना दुख जाए। दर्शन परसे आए गुरु का, जन्म मरना दुख जाए।

पंगत मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश कर्मा दृश्य धर्म सर्वा प्रणाडंड बाढ़ चाचरी छंद प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे पारे हरियं करियं निरनामे अकामे पोजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या चतर चक्र दान्या चाचरी छंद न सत्रा न मित्रा न परमंग न पित्रा न कर्मंग न काय जन्मंग अजाय न चित्रा न मित्रा परे है पवित्रा पृथ्वी दिशा दृशा कृशा भगवती छंद प्रसाद कथते के आ छज देसा के आ भिज पेसा के आ गंज करमा के आ पंज परमा के आ भिज लोका के आ दित सोका के अवधूत बरना के विभूत करना के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक बरना के सर्वा भरना के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूप है के अनुभव अनूप है के आद देव है के आप भेद है के चित्रं विहीन है के कै दीन है के रोजी रजाक रहीम रिहाक है के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अपुल गुनाह है के सहान साह है के कारण कुनंद है के रोजी देहंद है के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौना है के सर्वत्र पौना है के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काला है के सर्वत्र पाला है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र पोखा के सर्वत्र पोखा के सर्वत्र त्राणा के सर्वत्र प्राणा के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मान्या सदैव प्रधान्या के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्रा के सर्वत्र चंद्रा के सर्वं कलीम के परमं फीम के आकल लाम है के साहिब कलाम है के हुसन उल वजू है तमाम उल रुजू है हमेशल सलाम है श्री खुतम दाम है गनीमुल सिकस्ता गरीब उल प्रस्ता बिलंदुल मकाना जमीनुल जमाना तमीजुल तमाम रुजू उल निदान है हरी फुल जीमै रजायक यकीनै नेकुल तरंग हैं भेद हैं भंग हैं जीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैव स्वरूप हैं भेदी नूप हैं समस्तो प्राज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है गाद है नूप है ओं आद रूपे नाद स्वरूप है नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व भागे सो सर्वा अनुराग त्रिपुगत स्वरूप है छज है छूत है के नरकं प्रणास है पृथ्वी उल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद भंग है नंग है भेख है लेख है परम है कर्म है नाद है जुगाद है जय है वह है भूत है तूत है नास है उदास है तंद है बंद है अभगत है विरक्त है नाद

गम्भः नीलः नादः नतः सुनतः जातः जादः चत्रच्छन्द त्वप्रसाद सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता सावलच्छन्द त्वप्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे नंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पोत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं श्री कह मितो अमी कह सदैव प्रभा है जय है जा है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है मेसुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनुल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी देहंद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरी फुल से कन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है गंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है मीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मित्तो सुबास है के अजब स्वरूप है के मित्तो बेपूत है के मित्तो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मित्तो भंग है मदपार छंद प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बरागंज हर नर प्रभाजन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर मंडन पब अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम आन छेद जगा अंग आसन भंग उपमा पार गत मितो उदार जल थला मंड दिस विस भंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्र धर तुरास आजान बाहु एक सदा ओ अंकाराद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबरा काल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अन छ जगात आज जनाबात अन झंझगात अन रंजबात अन टट भंडार अन ठट पार आडीठ धर्म अत पीठ कर मान ब्रण अनंत दाता महंता हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणाला है हर काला है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कल कारण हैं सर्ववारण हैं त्रित के तरण हैं जग के करण हैं मनमान्या हैं जग जान्या हैं सर्वं पर हैं सर्वंकर हैं सर्वपास्या हैं सर्वनाश्या हैं करुणा कर हैं विश्वं पर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं कलखंडस हैं परते पर हैं करुणा कर हैं अजपा जप है थपा थप है कृता कृत है मृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है मृता मृत है अजबा कृत है मृता मृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणाला है निर्नायक है सर्वपायक है पपंजन है आर गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्मवास है जास के व्यास है भुजंग पर्यात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संगतां संग शांत रूपे नमो परम तत्तं तत्तं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे नंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले नंगी अकामे एक अश्री छंद जय अल भू अजू न सौ का सौ गंज पंज लख पख
अकाल दयाल लेख पेख नाम अकाम गह अटाह नाथे प्रमाथे जोनि मोनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मं अपर्मं अगंजे अलेखे पो जंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामें बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजाय बिगनी में हरियं करियं करीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते सुन्यं पाव सुबंग सर्वदा सर्वजुगते दोकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दोक

पूजन तायो पूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बात बेनती चौपाई। हमरे करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहा हमारा अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबत मकाव हो आप हाथ दा मोहे बचाव हो सुखी बस मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दा करी है सब बैरन कवाज संगरही है। पूरा न होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ द मुझे बरी है मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजू करिए हो रक्षा। राख ले हो मोहे राख नहारे साहित संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मो बाद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानता। चीटी ते कुंचरा सफूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना काट काट के पट पट की जाना जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा अपनी बूझ उचारा। तुम सब ही तिरहत निरालम जानत बेभेदार आलम निरंकार निर्विकार निरलंब आद नील नद संभ। ताका मूड़ चारत भेदा जा को भेद न पापत बेदा ताका कृपा नन मानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नेह पैव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तुहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा। केह बेद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जे रज सेत जकीनी उत्पज खान बाहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चम भाव जुगा स्वरूप सुयम भाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तत्पाता सकल मलेच करो रण काता। जे असतोज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तुहै मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संगठ सुबटारे। जो काल को एक बार त्या है ताके काल निकट न है रक्षा होय ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट टरैंत तकाला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो। ताके ताप तनक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छुए सका न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दले हो बारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता
ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छै करता श्री अस तुज जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांच फल पावे सोई दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला सुना गुंग जो याहे सुरस न पावई सुना मूड चित लाए चतुरतावई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नरके रहै हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजैर्द सहस पुनतीन किहिजै भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा।

गोबिंद दास तुहार, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजियां वादाइयां, राग रतन परवार परिया, शब्द गावणे आईया, शब्दो ता गाव हो हरी केरा, मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओहो करे तेरा, कार्ज सब सुवारना, सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही, घर तेरा करता तेरा, सब किच है जिस देहे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया, बाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो, जिस दियां एह वड्याईया, कह नानक सुन हो संत हो, सबद तरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच सबद तित कर सुभागै, कर सुभागै सबद वाजे, कला जित करत हरिया, पंच दूत तुद वास कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कहो, से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ, तित करन हद वाजे, साचे लेवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लेवै बाज हो, क्या करे बेचारिया, तुद बाज समरथ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया, एस नौ होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया, कह नानक लेवै बाज हो, क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सबको कह आनंद, गुरु ते जाने आ, जानिया आनंद सदा गुरते, कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदर हो जिन का मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया, कह नानक एहो आनंद है, कह नानक एहो आनंद है, आनंद गुरते जानिया, बाबा जिस तू देह सोई जन पावा, पावा ता सो जन देह जिस नौर, क्या करहे बेचारिया, एक भरम भूले फिरह दह देस, एक नाम लाग सवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मला, जिना पाहना पावे, कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे, आव हो संत प्यारे हो, कथ की करह कहानी, करह कहानी अकथ केरी, कित द्वारा पाई है, तन मन धन सब सौप गुर का हुक्म मन्या पाई है, हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, गाव हो सच्ची बाणी, कह नानक सुन हो संत हो, कथे हो अकथ कहानी, ए मन चंचला चतुराई किनै न पाया, चतुराई न पाया किनै, तू सुन मन मेरिया, एह माया मोहनी जिनेत भरम भुलाया, माया त मोहनी तिनै कीती जिन ठगोली पाईया, कुरबान कीता तिसै विट हो जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किनै न पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, हो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले, साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाई है, ऐसा कम मूडे न खीचै जित अंत पछोताई है, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, आगम आग उचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किनै तेरा, अपना आप तू जान हे जी, जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाणा ए, आख है ता वेख है सब तू है, जिन जग तो पाया, कह नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया, स्वर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत, गुर ते पाया पाया अमृत, गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया,
ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਪਾਏ ਇਕ ਵੇਖ ਪਰ ਸੁਣਾਇਆ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨਵਾ ਪੁੱਠਾ।

जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्याव हे जिस नौ कथा सुनाए हे अपनी से गुरु द्वारा सुख पाव हे कह नानक सचे साहिब जपाव तिव चलाव हे एहो सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया जिन तुरह लिखया आ इक फ्रह कनेरे करह गल्ला गली कनैना पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो पवित संगत सबाईया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित्ता जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै वैन सहजै सहसा न जाए नह जाए सहसा कित संजम रहे करम कमाए सहसा जीव मलीन है कित संजम धोता जाए मन धोव हो शब्द लग हो हर स्यो रह हो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजाए सहसाए विजाए जिया हो मैले बाहरा हो निर्मल बाहरा हो निर्मल जिया हो ता मैले तिनी जन्म जुआ हारे एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मन हो वे सारे वेदा महना मुतम सो सुन है नाही फिर है जो बेताले कह नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तिनी जन्म जुआ हारे जिया हो निर्मल बाहर हो निर्मल बाहर हो ता निर्मल जिया हो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचा नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले से वणजारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई जिया हो रह गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याय अंतरात्मा समाले आप छड़ सदा रह परना गुर बिन वरन जाने कोई कह नानक सुन हो संत हो सो सिख सन्मुख होए जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावै पावै मुक्त ना होर था कोई पुछो विवेकिया जाए अनेक जूनी परमे आवै बिन सतगुर मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गाव हो सच्ची बाणी बाणी ता गाव हो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिन को नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी पीव हो अमृत सदा रह हो हर रंग जपे हो सारे गपाणी कह नानक सदा गाव हो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बज हो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछू ना जानी चित जिन का हिरलाया माया बोलन पए रवाणी कह नानक सतगुरु बज होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागाए होआ समाओ शब्द से ती मन मिलया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिस नौ दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकता पौ पाए कह करता पे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख के सब बुझाए तोड़े बंधन होवै मुक्ता शब्द मन वसाए गुरमुख जिस नौ आप करे सो होवै एक सस्यो लिवलाए कह नानक आप करता पे हुक्म बुझाए सिमरित शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ता सार न जानी तत्ता सार न जानी गुरु बज हो तत्ता सार न जानी तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहानी गुर किरपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया बोल है अमृत बाणी कह नान सो तत पाए जिस नौ अन दिन हर लिव लागै जागत रहन विहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मन हो विसारी है मन हो क्यों विसारी है ए वड दाता जे अगन मह आहार पहुँचा वे ओ सुनो केहो पोहे न सकी जे सुनो अपनी दिवला वे अपनी दिव्या पिलाए गुरमुख सदा समाली है कह नानक ए वड दाता सो क्यों मन हो विसारी।

0: अकाल मूर्त जूनी सब हंगुर प्रसाद असमला पहला वार श्लोक अनार श्लोक माले पहले के लिखे टुंडे असराजे की धन श्लोक माला पहला बलहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की एक कतना लागे वार महला दूजा
1: जे सोचन दाग वह सूर चढ़े जाए

कुदरत स कुदरत सुनिए कुदरत भाव संसार कुदरत पाताल आकाशे कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद पुराण कतिबा कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत सर्व्या कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहां कुदरत ने किया कुदरत बदिया

0: हियाँ सभी गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सरबंजाल नानक मुसे ज्ञान भी होनी खा गया जमकाल माला पहला
1: वायन चले नचन गोर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़।

0: पार कूड़ काया कूड़ रपड़ कूड़ रोप पार कूड़ मिया कूड़ बेबी खपोए कार कूड़ कूड़ा नहीं लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाणे बेनते तुझ बात कूड़ो कूड़ माला पहला
1: सच ता परजानिए जरिदे सच्चा होए कूड़ की मल त्रेतन करे अछत होए सच ता परजानिए जा सच तरे प्यार नाओ सुन मर रहसिय त पाए मोख द्वार सच ता परजानिए जा जुगत जाने जियो धरत का साध का विच दे करता बियो

0: मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जे संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे मुख द्वार, जदि सदावे जुगत न जाने छड वह घर बार, सबको पूरा आपे होवे घटना कोई आखे।
1: पत परवाना पिछे पाई।

साधना की आचार्य कथा अष्टपदी साधक संग मुख उजर हो तो साध संग मल सकलिख हो तो साधक संग मिट अमानु प्रभु साधक संग प्रकट सु ज्ञान साधक संग बुझा प्रभ नीरा साध संग सब होत नवेरा साधक संग पाए ना व्रतन साधक संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णा कौन प्राणी नानक साध की सुभा ब्रह्मा समानी साधक संग अगोचर मिले साधक संग सदा पर फुलै साधक संग आवे बस पंचावन साध संग अमृत रस पहुंचावन साध संग होए सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतहु तावे साध संग अस्तित मन पावे साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सु प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु का संग महापनीत साध संग किस्यो नहीं बैर

संत का दुखी सद अपवित्तो, संत का दुखी किसा का नहीं मितो, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मराए, संत की दुख ना सुख ते टराए, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत भावे ता लय मिलाए, संत का दुखी अज बीते टूटाए, संत का दुखी कित काज ना पहुंचाए।

0: विहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, जो पावक इधर नहीं त्रापाए, संत का दुखी छुट्टा अकेला, जो बुआड़ तिल खेत माह दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहते, संत का दुखी सद मिथ्या कह तो, किरत निंदक तुरी पया, नानक जो तिस पावे सोई थया।
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरै ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजा नासा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न त्रिष्टा कोए, जैसा पावा तैसा कोई होए, पया किरत न मिटा कोए, नानक जाना सच्चा सोए, सब कट तिसके ओहो करना हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करहो संत मीत, प्रभु की उस्तत करहो दिन रात, तिसा त्याव हो सास गिरास, सब कछ वरता तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खेल आप करना हार, दूसर कौन कहा बिचार, जिसनो कृपा करा तिस अपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से। सलोका तज हो स्यान सुर जन हो, सिमरहो हर हर राय, एक आस हर मन रख हो, नानक दुख परम पहु जाए। अष्टपदी मानुख की टेक ब्रिचि सब जान, देवन कौ एक भगवान, जिसका दिया रहा गाए, बहुर न तृष्णा लाग आए, मारा राखा एको आप, मानुख कै किछ नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागै कोए, उस्तत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सोहेला कर लेहे जियो, नैन हो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसा सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिट है पाप जपिया हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोला है हर मुखी, सदा सदा जानो होते सुखी, एको एक एक पछाना है, तोत की ओ हो सोजी जाना है, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन है निरंजन जान्या, गुर प्रसाद अपने आप सुजा, जिसकी जान हो तृष्णा बुझा, साध संग हर हर जस कहत, तो सर्ब रोग ते ओहो हर जन रहत, तो अनदिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मह सोई निर्वाण, एक ऊपर जस जन की आसा, तिसकी कटी है जम की फासा, पार ब्रह्म की जस मन भूखा, नानक तसै न लागह दुख, जिस को हर प्रभ मन चेत आवै, सो संत सोहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किसते डरै, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कारज मह आप सुमाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बूझिया, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल, नह किछ जन्मै नह किछ मरै, अपन चल ताप ही करै, आवन जामन दृष्ट अन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मह आप।

गुण गाओ अस्पदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरहु गोबिंद मनांतर की उतरा चिंद आस नित त्याग हो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अगन सागर तरहो हर धन के भर ले हो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सत्संग भज परमानंद नरक निवार उधार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित बहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह उधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाले हे रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाका मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाह दवाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरदेव पूर्ण होई सेवक की सेवाल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निबिहि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसा सो होत निदान सर्ब इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बहर न होवे अमन जान हर धन खाट चला जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तमे स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरित शास्त्र भेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरन नानक ते आए जिस मन बसा सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उधारै निर्मल सोभा अमृत ताकी बानी एक ना मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परमा साध नाम निर्मलता के कर्मा सब

कर सुख वसिया बाहर सुख पाया। कहो नानक गुरमंत्र दृढ़ाया लख खुशियां पाशाहियां। जे सतगुर नदर करे निमके घर नाम दे। मेरा मन तन शीतल होए उद्यम मत प्रबंत्र जामी। ज्यो प्रेरे त्यों करना दे महावाक अनुसार सेवक परिवार। वीर सतनाम सिंह जी उत्ते उन्हां दे समूह परिवार वालों अपने बेटे दे पहले जन्मदिन की खुशी दे विच सतगुरां दियां ओट आसरा लैके सतगुरां दी बाणी दा ओट आसरा लैके श्री सुखमनी साहिब जी दे बाणी दे जाप करवाए हन। उपरंत सतगुरां दी पावन बाणी दे कीर्तन आप सत्संगत ने सरवण किए हैं। समूह परिवार वालों जो समालक ने बच्चे की दात दी सी पहला जन्मदिन मनाना किया है। भाव कि सानू सतगुरां वालों हदायत भी है कि जिथे मालक सानू दातां देंदा है दात दाते दात रखी हाथे अपने जिस भावे तिस दई उस मालक नूं भी याद करना बनता। इस परिवार ने जो बड़े ही भावनावां दे नाल गुरु दे दर ते आके सेवा कमाई है। आओ इस पावन शब्द राही आपां बच्चे नूं असीस देने आ। पूता माता की असीस निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। पावन शब्द श्रवण करिए जी। तकरीबन दस में दो पावन शब्द वो श्रवण करने हैं फिर ज्ञानी जी आप जी नूं सतगुरां पावन शब्द की विचार श्रवण कराउंगे। आओ श्रवण करिए जी।

जीवत जीवत जीवत रहो, आराम रसायन नित उठ पीवो। सतगुरु कृपा करन पढ़ी हुई बाणी, कीती हुई मालक दी सिलसिला, कीती हुई उस्तत आई हुई समूह सात संग दी हिरदयां दे विच वसाउणा करन, गुरसिखी जीवन बख्श करन दरों करो नाम दी दात बख्श करन जी। सतगुरु जी करम कृपा करन बच्चे दे सिर ते मैं भरिया दे के रखन, वड्डियां उमरां करन माता पिता दे आग्याकार अति उच्ची विद्या दी दातां हासिल करन जी। आओ आनंद साहिब जी दी बाणी दा पाठ ते सतगुरां दे चरणां दे विच जुड़ के करिए जी अरदास।

तुमरी कृपा में सुख कनेरे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे।

देही तो वह चक्रवणाए माय अनुभूतावे अंतर मैल न उतरे हो मैं फिपरे आवे जावे नींद व्यापिया काम संतापिया मुखो हर हर कहावे वैष्णो नाम कर्म हो जुड़ता तो कट्टे क्या बड़ पावे हंसा विच बैठा बगन बनी नित बैठा मच्छी नू तार लावे जा हंस सभा विचार कर देखन ता बग्गा नाल चोड़ कद ना आवे हंसा हेती हंसा हीरा मोती चुगना पुग डड्डा परन जावे उडर आवे चारा बगला मत होवे बंज लगावे जिको लाया तिथि लागा किस दोष विच है जहर एवें पावे सतगुर सरवर रतनी भरपूर है जिस प्राप्त सो पावे सिख हंस सरवर इकट्ठे होए सतगुर कै हुकमावे रतन पदार्थ माणक सरवर भरपूरे खाए खर्च रहे तुर न आवे सरवर हंस दूर न होई करते वै भावे जन नानक दिस दे मस्तक पाग तुर लिख्या सो सिख गुरु पै आवे आव तरिया कुटम सवतारे सभा सृष्टावे मल्ला पंजवा पंडित आखाए बोती राही कोरण मोड़ जनेहा अंदर मोहनत भरम व्या पैतिष्ट नाही देहा कूड़ी आवे कूड़ी जावे माया कीनत जोहा सच कहे ता शो आवे अंतर बोता रोआ व्या पै दुरमत कबुद्ध कमूड़ा मन लागा तिसमोहा ठगे सेती ठगरण आया साधब इको देहा सतगुर सराप नदरी विच दो कड्डै ता उगड़ आया लोहा बहु तेरी थाए रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवे फिर मनूरों कंचन होहा सतगुर निरवैर पुत्र सतर समाने औगुण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्त होवे लिखिया तिस सतगुर नाल सुनिया अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल हो तिस हृदय वसेहा आउन जाना तिसका कटिया सदा सदा सुख हुआ पौड़ी जो तुत भाणा जंत सो तुत सुजई बुझई जो तुत भाणा जंत सो दरगह सिजई जिसनो तेरी नदर हो मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस गई जिसके सामी वाल निरभो सो कही जिसनो तू कृपाल सच्चा सो त्याई जिसनो तेरी मैं न पोह अग्नई जिसनो सदा दयाल किसनों सदा दयाल जिन गुरते मत नहीं इस लोक मन लाते हैं।

सब को तेरा वास अग्न गोचरा, तू भक्ता के वास भक्ता तान तेरा श्लोक मन अपना। आपे वैद आप नारायण, ए वैद जी का दुख लायण, गुरु का शब्द अमृत रस खायण, नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मिटायण। मल्ला पंजवा हुक्म उछलै हुक्मे रहै, हुक्मे दुख सुख सम कर सह, हुक्मे नाम जपै दिन रात, नानक जिसनु होवै दार। हुक्म मरै हुक्मे जीवै, हुक्मे नाना वड्डा तीवै, हुक्मे सोग हरख आनंद, हुक्मे जपिन रोदर गुरमंत।

तेरे जो जवरान सब तेरा कारण। श्लोक महला पंजवा उस्तद निंदा नानक जी मैं हब बंजाई छोड़िया हब किस त्यागी। हमेशा कूड़ा वे डिठे तो पल्ले तंडे लागी। महला पंजवा फिरदी फिरदी नानक जीओ हो पावी की ही बहुत सावर तंदा। आहो सुख सुखाली सुखी जा गुरमिल सज्जन मैं लद्दा पौड़ी। सबे दुख संताप जत उदो भुली है जे कीचन लाखो पाव तक नुकदी है। जिसनों उसके नाम सुनत कांडी है। जिसनों उसके नाम सजोनी हांडी है।